0: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
1: बोलिए श्री पशुपतिनाथ भगवान को।

0: हरिओम ओम राधा सर्वेश्वर भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को
1: जय जय हो
0: सीताराम भगवान को
1: जय हो
0: राधा कृष्ण भगवान को
1: जय हो
0: गौरी शंकर भगवान को सिद्ध नवनाथ हरु को सिद्ध चौरासी नाथ को

0: भगवान मंगलवासरे कृति जनर्मेला महस्थापित। गंडकी अंचल को बोटो गंडकी प्रदेश पनि हो र कैलाशकूट अत्यन्तै त्यो सुन्दर त्यो पर्वत।
1: लोकानुग्रह विग्रह शिव गुरु गोरक्षनाथो भवतम।

पिता पुत्र कलत्र मित्र पशु विदेहेन गेहेन किम् ज्ञात्वैत्वक्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वती वल्लभम्।

कोटियो महायज्ञ को देवघाट धाम को योगी नरहरिनाथ महाराज को समस्त समागत संत चरण को समस्त भगवत चरण को तीर्थमय नेपालामा को गौ माता को श्री राधा माधव भगवान को सालग्राम भगवान को।

0: சர்வே பவந்து சுகினஹ சர்வே சந்து நிராமயாஹ சர்வே பத்ராணி பஸ்யந்து மா கஷ்டே துக பாக் பவே.
1: பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணாஷ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவ அவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஸ்ரீ சிவ கோரக்ஷநாத் கோ சித்த நவநாதரு கோ சித்த சௌராசி நாத் கோ பாகீஸ்வரி நாம கோ கோட்டி ஹோம் மகாயஜ்ய கோ கோ மாதா கோ ஆதிப்ரயாக் தேவ்காட் நாம கோ ராஷ்ட்ர தேவ ஸ்ரீ பசுபதி நாத் கோ உபஸ்தித் சம்பூர்ண ஸ்ரதாலு பக்த சஜ்ஜன் பிரிந்த கோ ஆஜ கோ ஆனந்த கோ ஓம் ஹர ஹர ஹர ஹர மகாதேவ் சம்போ. ஓம் ஜெய் ஸ்ரீ ராதே ஸ்யாம். ஆதரணீய சஜ்ஜன் பிரிந்த, ஸ்ரீ சனாதன சாஸ்கிருத்திக் சம்பதா சம்ரக்ஷன் சங்க காதக்ஷ ததா கோட்டியோ மாயக கா சம்விஜக் எவம் கர்த்தா பிரேம் நிதி பார்ஜாஜியு, यसै संस्थाका उपाध्यक्ष श्री सीता कुमारी बास्तालाजी, यसै संस्थाका महासचिव तथा कोटियो महायज्ञका धार्मिक सम्पदा तथा आमा समूह समन्वयकर्ता श्री रामप्रसाद गौतमज्यू, यसै संस्थाका कोषाध्यक्ष तथा कोटियो महायज्ञका पूजा सामग्री व्यवस्थापन संयोजक श्री राजेन्द्र प्रसाद आचार्यज्यू, यसै संस्थाका सहसचिव श्री सुभाष घिमिरेज्यू, सदस्य श्री हरिशरण तिमिल सिन्हाज्यू, श्री डिल्लीराज दबाडीज्यू, श्री पण्डित सुदर्शन सुवेदीज्यू, श्री रामप्रसाद सिलवालज्यू, श्री शीतल कणेलज्यू, श्री कृष्ण कुमारी बानियाज्यू, श्री ओमनाथ सापकोटाज्यू लगायत सम्पूर्ण श्रद्धालुहरूले कार्यक्रमको सफलताको लागि खेल्नुभएको पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको मूल्याङ्कन भगवान यज्ञ पुरूषले नै गर्नुहुनेछ. यहाँका सुन्दर पक्षहरूलाई जन जनमा पुर्याउने विश्वविख्यातमा प्रचार प्रसार गर्ने पत्रकार मित्रहरू सृजना आर्यजी, कुलप्रसाद काफले, सुनिल कुमार श्रेष्ठ, कालिका टिभीबाट सौरभ पौडेलजी, सौगात कोइरालाजी, प्राविधिक मित्र इन्द्र सुवेदीज्यू, रेडियो

0: रूपी की गाड़ी चला रहा था। भट्टी भट्टी बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।